ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम।

कुशाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौलिक लोलिनी चारु गंगा लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजम चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रकल्पम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूलनम शूलपाणी भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविंदम भजंतीह लोके परेव नराणाम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं जरा जन्म दुखौ धर तातम